चेतावै। चेतावन का सदका सर्ब सुख होए। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियायत। देग तेग फतेह ब्रिज की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाए। खालसा जी के बोल बाले बोलना जी। सिखा नु सिखी दान, केस दान, रह दान, विवेक दान, विसाह दान, प्रसाद दान, प्रसादान।

रे तुम्हारी कृपा में सुख कन्हेरे कोई ना जान तुम्हारा अंत उचेते ऊचा भगवंत सगल समगरी तुम्हारे सूत्र तारी।

गुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय प्रियंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिह जिथे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दयावें ताए सब थाई हुए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुगतियां हठियां जपियां तपियां जिन नाम जपिया वंड के छकिया

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

चलै। जह मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाव पर हरे। गुरमुख नाम जप मन मेरे, नानक पाव सूह कनेरे। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंधन परे, हर का नाम जपत निह तरै।

काची पिहित मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पदद बहमूच बहुत सियानप जम का पहो ब्यापै अनक जतन कार त्रिसन्ना तरापै।

कर जावे। जिह प्रसाद एरो कंचन देही, लेव लाव तिह राम स्नेही। जिह प्रसाद राव ला रहत, मन सुख पावे। हर हर जस कहत, जिह प्रसाद रे सग

सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुगत जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता,

प्राणी छुट्टै। जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख नाम, जपत मन होत सुख, चिंता जाय मिटे हंकार, तिस जन को कोई न पहुंचे। आदि से रूप ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कार्ज पूरा।

रंग जय जय सब देवनाथ दुआजे सुन सुन अनंद करे प्रभु गाजे प्रगटे गोपाल महंत के माथे नानक कुदरे तिन कै साथे।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग प्रसाद

जे तिस नजर न आवई तावात न पुछै के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तिहा कोई न सुजाई जे तिस गुण कोई करे। सुनया

आस मन्ने की गद कही ना जाए, जे को कह पिछे पछताए। कागद कलम न लिखण हार, पन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए,

ज्ञान खंड का आखो कर्म, किते पवन पाणी वाय संतर, किते कान महेश, किते बरमे घाट घड़िया है रूप रंग के वेश, कितिया करम भूमि मेर केते, केते तू उपदेश, किते इंद चंद सूर केते, किते मंडल देश, किते सिद्ध बुधनाथ केते, किते देवी वेश, किते देव दान मुन केते, किते रतन समुंद, कितिया खाणी कितिया बाणी, किते पात नरेंद, कितिया सुरती सेवक केते।

जिनके राम बसे मन माहे, तथे भगत बसे के लोह करे आनंद सच्चा मन सोए, सचखंड बसे निरंकार कर कर वेखे नदर निहाल, तथे खंड मंडल वरपंड जेको

शांत नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेक्षी अभेवे नमो काल काले नमो सर्प नमो काल काले नमो सर्पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी नाथ इंद्र संगी परमाथे नमो भान भाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरते निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद वादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परभंगी परमाथे समस्ती विभूते कलंकं बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेशं परम रूपे नमो जोग जोगेशं परम सिद्धे नमो राज राजेशं परम विरुद्धे नमो शास्त्रपाने नमो अष्टर्माने नमो नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता पेखिये परमी अपोगी भुगते नमो जोग जोगेशं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर मे नमो प्रेत अप्रे देवे सुतर मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाह शाहं नमो भूपूपे नमो दान दाने नमो मार माने नमो रोग रोगे नमः संग सेनाने नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्र सदा सदा सच दानंद सर्वंग प्रणासी अनुपे रूपे समस्त निवासी सदा सिद्धा बुद्धा बृद्धकर्ता अदो उर्दर्दंग अगंग ओघर्ता परंग परंग परमेश्वर प्रोष बालंग सदा सर्वदा सिद्धाता दयालंग अशेदी अभेदिया नामंग कामंग समस्तो पराजी समस्तामंग तेरा जोर चाचरी शांत जले है थले है पीता पे है प्रभु है जो है दे सब सब जंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ते निधाने नमास्तमते नमास्तमंग परमाते नमास्तमंग गंजे नमास्तमंग पंजे नमास्तमंग काले नमास्तमंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्पेशे नमो राजराजे नमो साजे नमो शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व ईतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृष्ण नमो सर्व रंगे दरभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे खिजय बिजय समस्तंग प्रसिजय कृपारंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा सदंग निवासी चरबड़ छंद अथवा प्रसाद अमृत कर्मे अमृत तरमे अखल जोगया चल भोगया चल राजे अटल साजया खल तरम लख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग तरानंग सर्वं भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वं भेवंग सर्वं काले सर्वंग पाले रुवाल शांद त्वा प्रसाद आदरूपन आदमूर्त आजोन प्रख पार सर्मान त्रमान देव भेवाद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वगोपन काल जतर तथर विराज तूतरु प्रसाद नाम ठाम ना जा जग जात जागरूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त आजमन आद अशेख देश और न पे जागरूप रेख न राग जतर ततर दिशा विशा हो पहलू अनुराग नाम गांहीन पेख तामुन जाय सर्वान सर्वत्र मान सदय मान ताहे एक मूर्त अनेक दर्शन।

काल अनुभूत अंग अभंगमत गदमित पार गुणगन गदमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम अद्वत प्रचंडमित गद अखंड आलस्य कर्मा दृश्य धर्म सर्वा प्रनाढ्य आन दंड बाढ़ चाचरी छंद त्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकर इंद्र नामे अकामे भुजंग प्रयात छंद चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र भरती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र माने चतुर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्रंग परम न सत्र न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्र न मित्र परे पवित्र प्रतिशय अधिशय अदृश्य अकृश भगवती छंद त्व प्रसाद कथते किया छुज दिशा किया बिज बिशा किया गंज करमे किया पंच परमय किया बिज लोके किया दत सोके गभूत भरण के विभूत करण के राजम प्रवाह तरमंग तुझा है किया सोख भरण के सर्वा अपर्ण के जगतं कृति है के शतरंग क्षत्रि है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुपव रूप है के आद अधेम के आप अभिम है के चतरंग विहीन है के एक है अधीन है के रोजी रजा के रही मेरे हक है के पाग बेहब के गैबल गैब के अफुल गुनाह है के शाहन शाह है के कारण गुरिंद के रोजी दहंद के राज कर रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान है सदैव के सर्व सर्वत्र धान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पाउण है के सर्वत्र दिशा के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीना है के सर्वत्र लीना है के सर्वत्र जा हो के सर्वत्र पा हो के सर्वत्र दिशा है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वगंत गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र दिशा है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र मान है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप है के सर्वत्र थाप है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कली में के परमंग भई में के आकल लामे के साहिब कलाम है के सनल वजू है तमाम रजू है मे सुर सलाम है सलीकत मदाम है गनीमल शिकस्त है गरीबल प्रस्त है बुलंदल मकान है जमीन उल जमान है तमीजुल तमाम है रजुल निदान है तारीफुल अजीम है रजाग यकीन है अनेक उल तरंग है भेद है भंग है अजीजुल निवाज है गनीमल खराज है अंदरक स्वरूप है तरमुक्त विभूत है पूर्वोक्त प्रवाह है सुजुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है भेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैव लोकाम है निर्वास रूपये अगाध है अनुपय अहंगाध रूपये नास रूपये नंगी नाम है त्रिभंगी त्रिकाम है त्रिभर्गम द्रवाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वागे सुसर्वा अनुरागे त्रिभंग स्वरूप है शुजा शूत है के नरकंग प्रणास है प्रथुल प्रवास है नरुक्त प्रवास सदैव सदा विभुग स्वरूप प्रजुक्त रूपये चाचरी छंद अपंग अनंग पेख लेख परम कर्म नाद जुगाद जय है पै है भूत है तूत है नास है उदास है तंद है बंद है अभगत है विरक्त है नास है प्रकाश है नचंत है सुनित है अलिख है दिख है अलेख है पेख है अटा है अगा है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट शंत प्रसाद सर्वं हंता सर्वगंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता सावल शांत प्रसाद नमो नरकनासे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्मं परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे सर्वंगी नुपे गाद स्वरूपे निर्बाध अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पौत्र न पुत्र न सत्तर न मित्र न पाते न माते न जात न पाते नृसाकं श्री कह मितो मे कह सदैव प्रवाह है आ जाय है अजा है भगवती छंद त्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है मेसुल सलाम है समसुल कलाम है के साहिब दिमाग है कृष्ण चलाग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहांद है के राज करहेंद है करीमल कमाल है के सुनल जमाल है गरीमल खराज है गरीबल निवाज है हरीफुल शिकन है रासल बिकन है कलंगंग बुरनास है समसुल निवास है गंजुल गरीम है रजाय गिरहीम है समसुल जुबा है के साहिब ग्राह है के नरकंग बुरनास है वैष्णुल निवास है के सर्वगल सरबल गवन है मैसुर गवन है तमामुल तमीज है समसुल अदीस है
ادیسو لیک ہے میسو لبیک ہے زمین زما ہے امیک الما ہے کریم الکمار ہے کہ جرت جمال ہے کہ اچلنگ برکاس ہے کہ متو سباس ہے کہ عجب سروپ ہے کہ متو ببوت ہے کہ متو بسا ہے کہ آتم پربا ہے کہ اچلنگ انگ ہے کہ متو ابنگ مد بھار شاند تو پرساد من من پرنام گنگن مدام ہر بر اگنج ہر نر پربنج انگن پرنام من من سنام ہر نر کھنڈ بر بر نر امنڈ انبو ناس من من پرکاس گنگن پرنام جل تھل مدام انشج انگ آسن اپنگ اپما اپار گت مت اپار گنگر ادار منگن پرنام جل تھل امنڈ جسوس پنڈ جل تھل مہند سوس بیان تن بب رات تر تر تراس آ جان باہ ایک سداہ اوکار آد کتنی اناد کر کھن خیال گربر اکال کر کر پرنام چچر نام اش جنا انش جگات اج جنا بات ان چنج گات اندراج بات انٹوٹ پنڈار ٹھٹ اپار آد ریٹ سرم ات ریٹ کرم ان برن انداتا منتر بول منا شاند تو پرساد کرنا لہ ارکا لہ کل کنڈن ہے میں منڈن ہے جگتےسر ہے پرمیشر ہے کرکار ہے سرب بارن ہے ترتگے ترن ہے جگ کے کرن ہے من مان ہے جگ جان ہے سربنگ پر ہے سربنگ کر ہے سرپاس ہے سربناس ہے کرنا کر ہے بسمبر ہے سرویسر ہے جگتےسر ہے برہمنڈس ہے کل کھنڈس ہے پرتے پر ہے کرنا کر ہے اجپا جپ ہے تھپا تھپ ہے کرتا کرتا مرتا مرت ہے امرتا مرت ہے کرنا کرتا ہے اکرتا کرتا ہے ترنی ترتا ہے متےسر ہے پرمیشر ہے کرتا کرتا ہے امرتا مرت ہے اجبا کرتا ہے امرتا امرت ہے نر نائک ہے کھلگائک ہے بسومبر ہے کرنا لے نرپ نائک ہے سرپائک ہے پاپنجن ہے ارگنجن ہے رپتاپن ہے جب جاپن ہے اکلنگ کرتا ہے سروا کرتا ہے کرتا کرے ہرتا ہر پرماتم ہے سرواتم ہے آتم باس ہے جس کے جیسا ہے

अगंजय लेखे पुजंग प्रयाद छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तल निवासे नृगामंग विभुते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विभुते सदा सचदानंग सतरंग प्रणासी करीम करीमल कनिंदा समस्तल निवासी अजाय विभुते गजायब गनीमे हरियंग हरियंग करीमल रहीमे चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे

जी, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पातशाही दसवीं तवा प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिद्धांत के देख प्रयोग हर योग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे हे देश को देख रहे हो मत कौना देखित प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रती बिन एक रत्ती के माते मतंग जरे जर संग अनुपतंग सरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पावन के गौन को जात निवारे भारी पुजान के भूप लेवत न्याप शीसना जात बिचारे एते पय तो कहा पे भूप तंत को नागे पाए पधारे जीत फराय सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूड गजान के सुंदर हिंस ही है राज हजारे भूत भिख भवान के भूपत कौन गण जात बिचारे श्री बस श्री भगवान भजे बनंद गुंद के धाम सिधारे तीर्थ नाहन दयादम दान संजम नेम अनेक विशेखा वेद पुराण कदेव गुरान जमीन जवान सबान के पेखा है पवन आहार जति जतार सब सब चार हजार के देखा है श्री भगवान भजे बिन भुपत एक करती बिन एक ना लेखा है शुद्ध सिपाहा दुरंद वास सासना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीर मरोर वासन मातम तंगन मान वलेंगे श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार विचारे सार की धार पशैया तोर दे समलंद वासन माते जान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो बातने चक चार लवैया साहिब श्री सबको सरनायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव नंदन साजर भूत भगवान जपाएंगे जीव जिता जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपाएंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैतुन पापन के बुंज खपाएंगे साध सम प्रसन्न फ्रैजक सतर सब अवलोक छपाएंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरात जौन दलों को राज करेंगे कोट स्नान गजातक दान अनेक स्वंबर सार भरेंगे ब्रह्मेशन विशन सचिप तंत फसेजम फास भरेंगे जे नर श्रीपद के प्रस है भक्त नर फेरना देह तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन बूंद गए बैठ रहे भक्त्यान लगायो नहात फरियोलिया सात समुन्द्रन लोग गयो पर लोग गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ गए ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साज कहूँ सुन ले हो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो काहुल पाहन पूजत रहो शेर काहुल लिंग घरे लटकायो काहु लखे और बाची दिशा मह काहु पशाह को शीस निवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजनतायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजनतायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण हुए चित की इच्छा ताब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपार हमरे दुष्ट सबैत मंकावो आप हाथ दे मुहे बचावो सुखी बसे मोरो परवार सेवक सिख सबाय करतार मोर अच्छा निज कर दे करे है सब बैरन को आसंग रहे पूर्ण हुए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अबर न त्याहूं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिय है चुन चुन शत्रु हमारे मारिय है आप हाथ दे मुझे उबर है मरण काल का त्रासन भर है उजो सदा हमारे पछा श्री अस्तुजु करे हो रक्षा राख लो मोय राखण हारे साहेब सन सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम्हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बबतरा काल पाए शिव जी अवतरा।

खाने करे निवास छुरी बगान तिन गल ताक तिन घर ब्राह्मण पूरे नाज ना भी आवे उसाद उड़ी रास कूड़ा व्यापार कुड़ बोल करे आहार शर्म धर्म काढ़े राजो नानक कूड़े भरपूर मथे टिका तेर तो तिक खाए छुरी जका साई नील वस्त्र पैरे वे प्रमाण मले धानले पुजे प्राण अब आख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना देखे चौका कड्डी कार ऊपर।

पूरे सतगुरु पूरे छाणे जिथे शुभ गुणा का व्यापार हुंदा इत्थे मिल जांदे ने। सतगुर शाहो गुण बेच इहदे बदले लैंदे की है अवगण लेत सुन सुन जो सुजस्त जगत उठ धावै जी। ता ही तो संसार दे लोक जड़े ने मेरे गुरु की वड्डी वड्याई कन्ना नाल सुनदे ने ता फिर सतगुरु जी दे चरणा विच आके मेरे वाहिगुरु जी दीआं वड्याईआं करदे ने।

तेरे पाण भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आ गया पहिया काल की तबे चलायो।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,